झील एक निकलना का दोस्त आख दिए खूबस रस करना का पल गए गुफरी रेना मुहा जानने गह कार खो जई सोना लगुंदी नाजाया को सर नफ्छे आशिये वह को उदरा दस्तिया खुद ये भी किया और दस्तिया का खो मैं सर ये जजबू खो खुद ये भी जी खुदा ये जी को पुष्टि को शुपांदना फिर से गल आने हैं पर वतदारी आप खाती है जर जो वाया मैं करिश्मा ये गा को अरमान जादा वे जी छा सा करना का पर सन मिल्कू थे बात जी फारस नामा फिर खुद ये वाना।